0: ethnic programs on 5EBI
1: as subsidised by the Commonwealth Government
2: through the Community Broadcasting Foundation.
1: Everybody all day. What are you doing this Saturday night? Why not join me, Rita, for International Rendezvous on 5EBI? Sit back and relax to a selection of music from around the world. Don't be shy. Pick up that phone. Call me on 8211 7066. Give a shout out to your family and friends. You don't need to be alone on Saturday night. I'll be here from 8pm to 1am. You're invited to share International Rendezvous with me, Rita, this Saturday night on the longest running multicultural radio station 5EBI, 103.1 FM, EBI World on your digital radio or via the web 5ebi.com.au. Join in, it won't cost you anything. Come on, call me on 8211 7066. I'd love to hear from you. Everybody over here.
3: Discover the timeless beauty of Indian classical music with Shruti Vani. Join us every Sunday at 8:30 a.m. as we journey through the enchanting worlds of Carnatic and Hindustani melodies. Immerse yourself in the soulful ragas, enchanting rhythms, and the rich heritage of India's musical traditions. Don't miss Shruti Vani, where tradition meets music.
4: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.
1: Good evening, you're listening to 5EBI FM 103.1, your multicultural radio station. The time at EBI is approaching 5 o'clock, and it's almost time for the Indian Community Program Fridays with Richa. We hope you sit back and enjoy your program here on 5EBI FM. To all the listeners, namaskar.
5: You are listening to Friday with Richa only at 5EBI 103.1 FM.
6: For live streaming at www.5ebi.com.au. Also on demand at
5: www.5ebi.com.au under Indian Hindi.
7: Join us on Friday with Richa.
8: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 5EBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर रिचा। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी छोटी छोटी खुशियों का नाम है जो हमें मुस्कुराने के बहाने देती है। तो आइए इस वीकेंड की शुरुआत करते हैं हंसी मजाक, संगीत और ढेर सारी बातें लेकर। मैं आ गई हूँ रिचा, और शुरू होता है हमारा आज का फ्राइडे विद रिचा शो। तो दोस्तों, फ्राइडे का मतलब है कि पूरे हफ्ते की थकान को पीछे छोड़कर बस मस्ती और आराम करना। कभी दोस्तों के साथ आउटिंग, कभी फैमिली के साथ डिनर, और कभी बस अकेले बालकनी में बैठकर अपने पसंदीदा गाने को सुनना। और अगर आप हमारे साथ हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ लाए हैं आपके लिए बेहतरीन नगमे और कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संगीतमय सफर उस गाने से जिसने हर दिल पर जगह बना रखी है। जी हाँ, फिल्म परदेसिया का गाना परम सुंदरी। जी हाँ, परम सुंदरी का गाना परदेसिया, जिसे अपनी सोलफुल आवाज दी है सोनू निगम ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना। इसके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। सुरों का जादू जब दिल को छू जाए, हर धड़कन गुनगुनाने लगे। सुरों का जादू जब दिल को छू जाए तो हर धड़कन गुनगुनाने लगे। संगीत ही वो ताबीज है दोस्तों, जो हर गम को भुलाने लगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: जब से।
1: वाह, क्या ही गाना था ये। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ, दो पत्ती का रांझड़ गाना। जी हाँ, इस गाने की मिठास और चार्म दिल को सुकून देता है। सुनते ही लगता है जैसे शब्दों और सुरों की एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। और इसी एहसास को बयां करता है ये एक शेर, अर्ज करना चाहूँगी। धुने जब दिल से निकलती हैं तो सीधे दिल तक जाती हैं, कभी रुलाती हैं तो कभी हंसाती हैं, संगीत ही हम सबको साथ जोड़े रखता है। तो पेश है दो पत्ती का रांझड़।

I just love this song. परंपरा और सचेत ने क्या गाया है, क्या म्यूजिक दिया है, और दो पत्ती से अभी आपने सुना ये गाना। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहित सूरी की फिल्म सैयारा की। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा कमाल दिखाया इस फिल्म ने कि सब कहते हैं कि 325 करोड़ का आंकड़ा पार करके फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह अपना जादू बिखेर रखा है। और बिल्कुल दिल तक पहुंचने वाली कहानी है। सोलफुल म्यूजिक ने सच में इसे 2025 की सबसे बड़ी हिट बना दी है दोस्तों। तो अब बात करते हैं उस गाने की जिसका हर कोई आज दीवाना है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, गाने का नाम है धुन। अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज़ है, मिथुन का दिल छू लेने वाला कॉम्पोजिशन, और देखते ही देखते ये गाना स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप 100 तक पहुंच गया है दोस्तों। 3 हफ्तों तक बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट पर ये नंबर 2 पर बना रहा है, ना कमाल की बात। तो आइए सुनते हैं इस वक्त का सबसे रोमांटिक, सबसे सोलफुल ट्रैक धुन फ्रॉम सैयारा।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा 103.1 एफएम पर, और आज मैं आपके लिए 2025 के सारे ज़बरदस्त खूबसूरत गाने चुन चुन कर लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। तो ब्रेक का समय हो गया है, कहीं मत जाइएगा, अभी और कुछ प्यारे सोलफुल गाने आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
1: एक धुन।
2: जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करें?
3: भैरवी किचन है ना,
2: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो?
3: अरे भैरवी किचन है ना,
2: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
3: भैरवी किचन है ना,
2: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
3: पैरा हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
2: और फोन नंबर
3: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक।
4: दिस इज फ्राइडे विद रिचा एट 103.1 FM।

दोस्तों ये गाना मैंने लिया था फिल्म वॉर 2 से, जो कि थोड़ी एक्शन और थ्रिल भरी मूवी है। जी हाँ, ऋतिक रोशन की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और कियारा एडवानी की चांद के साथ ये फिल्म आने वाली है। एक्शन स्टाइल और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है, तो तैयार रहिए क्योंकि इस बार एंटरटेनमेंट का लेवल और भी ऊंचा होने वाला है। तो देखना है ये मूवी आगे आने वाले समय में। तो चलिए सुनते हैं एक और जबरदस्त सा गाना। जी हाँ, बात करूंगी उसके बारे में इस गाने के बाद।

क्या गाना बनाया है ये, और ये गाना सुनकर तो मेरा पूरा स्टूडियो भी ठुमके मारने लगा है दोस्तों। लगता है कि अब वाकई वीकेंड ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अरे अरे, दिल गार्डन गार्डन हो गया ना दोस्तों। ये गाना नहीं, एनर्जी का एकदम पावर हाउस है। क्या आप भी गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सा डांस करने लगे हैं? ये था उयम्मा, एक आइटम नंबर जो सिर्फ गाना नहीं पूरा डांस चैलेंज है। अगर आपने ठुमका नहीं लगाया तो मान लीजिए कि फ्राइडे वेस्ट हो गया। दोस्तों ये तो सिर्फ मस्ती मजाक है। आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा, रिचा के साथ 103.1 FM पर। तो आज प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग अब मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे अगले हफ्ते अगले फ्राइडे को, जी हाँ 5 बजे एडलेट टाइम। तो दीजिए ऋचा को इजाजत। नमस्कार, बाय।